0: इमीग्रेशन लॉ कानून विच मनिंदर कौर सिद्धू 18 सालों तो वध अनुभव नाल असी तुहानू हर कदम ते विश्वास नाल मदद करते हां।
1: मनिंदर कौर सिद्धू अते उना दी टीम तुहाडे कानूनी मामला विच विश्वास योग साथी।
0: brooklaw.co.nz ते जाओ जां 07838-3385 ते कॉल करो।
2: देश दुनिया धर्म सभ्याचार जिंदगी दे हर पक्ष ते भाईचारक सांझ बारे ऑनलाइन पढ़ो punjabiherald.co.nz।
3: न्यूजीलैंड विच वसदे पंजाब दी ताजा खबर।
4: ज्यादा जानकारी दे लई संपर्क करो सरदार हरजिंदर सिंह बसियाला जी नूं फोन 02102539830।

0: तो यार अल्कोहल लाइसेंस अप्लाई करना हेडेक बन गया।
1: स्ट्रेस ना ले, परविंदर डेविस लॉ है ना, न्यू लाइसेंस रिन्यूअल्स ते सारे अल्कोहल लाइसेंसिंग रिलेटेड लीगल इश्यूज दी प्रॉपर हैंडलिंग।
0: इवेंट और टेम्पररी अल्कोहल लाइसेंस भी?
1: हाँ, लाइसेंस अपील्स, पुलिस कार्रवाई, एम्प्लॉयमेंट इश्यूज ते होर सब लीगल काम एक ही छत नीचे। ते एक गल होर, उन्हां नाल गल अपनी लैंग्वेज विच कर सकते हो, इंग्लिश, हिंदी ते पंजाबी। परविंदर डेविस लॉ अल्कोहल लाइसेंसिंग हुन हो गई इजी। फॉर मोर इनफॉरमेशन कॉल 6421214091।
2: मैं क्या जी मुंडे दा व्याह तरिया ते तुसी सोचा विच घूमी जांदे हो।
3: भाई मैं सोच रहा सी के व्याह ते डेकोरेशन ते एंटरटेनमेंट दा प्रबंध किवें करिए।
2: इस दी जिम्मेवारी असी देवांगे स्टाइल एनजेड इवेंट्स नो, जो कि इवेंट मैनेजमेंट ते माहिर ने। ए बहुत ही प्रोफेशनल ने ते सारियां ही सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने, जिवें कि घर जां हॉल दी डेकोरेशन, भंगड़े दी टीम, डीजे, लाइव ढोल, जागो, डेकोरेशन हायर, मेहंदी नाइट्स अते मच मोर। मैं तां लक्की दा फोन नंबर भी नोट कीता होया है, 0211994458 जां फिर 0921295633।
4: स्टाइल एंड जेड इवेंट्स, फंक्शन कोई भी होवे उसनु यादगारी बनाउण दी जिम्मेवारी साडी।

0: Yes, मैं जीत गया।
1: वाह बेटा, फोन ते ता बहुत फास्ट है, पर 10, 18 प्लस 7 प्लस 13 यही ता मुश्किल है। स्क्रीन तो अख नहीं हटदी, पर पढ़ाई वेले ध्यान नहीं टिकदा।
2: साडा भी यही हाल सी, फिर असी SIP अबेकस ज्वाइन करवाया। बेटा 10 24 प्लस 58 प्लस 93 प्लस
0: 76
1: 251। वाह, इन्नी छेती।
3: SIP अबेकस ना बच्चियां दा फोकस, कंसंट्रेशन ते मेंटल मैथ स्पीड स्ट्रांग हुंदा है। पापा टॉय टॉय विच SIP अबेकस दा 10वां न्यूजीलैंड सेंटर खुल रहा है। फ्री ट्रायल क्लासेस 2-3 मई 2026। कॉल करो 09977-9967। नंबर एक बार फिर तो नोट करो 09977-9967। फोन तो दूर, SIP अबेकस जरूर।
4: की तुसी इमिग्रेशन दे किसे मसले दा हल चाहुंदे हो?
5: की तुहाडा वीजा बार-बार रिफ्यूज हो रहा है?
4: तां फिर अज ही मिलो Zenith Immigration Solutions नू।
6: सुखप्रीत कौर, लाइसेंस्ड इमिग्रेशन एडवाइजर, Zenith Immigration Solutions, न्यूजीलैंड रेजिडेंस, स्टडी वीजा, वर्क वीजा या डेपोर्टेशन, सेक्शन 61, मिनिस्ट्रियल या ट्रिब्यूनल अपील। कॉल 211-825-718,
4: 211-825-718,
7: या फिर विजिट करो लेवल 1, 706 ग्रेट साउथ रोड, पेनरोज, ऑकलैंड।
4: विजिटर वास्ते कार पार्क अवेलेबल है।

0: पापा टोयटोए, फ्लैट बुश, पापा कूरा विच अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस तो बाद हुन डीएच सुपरमार्केट आ गया है हेंडरसन विच। हुन तुहाडियां रोज दियां जरूरतां होण या इंडियन फ्लेवर्स दी क्रेविंग, फ्रेश इंडियन वेजिटेबल्स, ऑथेंटिक स्पाइसेस, ग्रोसरी ते डेली एसेंशियल्स सब कुछ मिलेगा 21 छत थल्ले। ओपनिंग दे मौके ते मिल रहे ने स्पेशल ऑफर्स ते ग्रेट प्राइसेस। हुन शॉपिंग होवेगी होर आसान क्योंकि तुहाडा अपना इंडियन ग्रोसरी स्टोर डीएच सुपरमार्केट हुन तुहाडे होर भी नेड़े है। डीएच सुपरमार्केट नंबर 5 मोजल एव हेंडरसन, इन्हां दी नवी ब्रांच खुल चुकी है।
1: जिंदगी दा सच है, एक दिन हर किसी नूं इस दुनिया तो रुखसत होना हुंदा है,
2: पर उस वेले सब तो जरूरी हुंदा है इज्जत, मर्यादा ते पूरी सेवा दे नाल अंतिम विदाई।
1: ऑकलैंड विच सिंग्स फ्यूनरल सर्विसेज लेके आए ने पंजाबी फ्यूनरल पैकेजेस, जिथे ट्रांसफर तो लेके एम्बामिंग, लाइव स्ट्रीमिंग, क्रीमेशन ते डेथ सर्टिफिकेट तक सारी जिम्मेदारी ओ संभालदे ने। टोटल पैकेज सिर्फ $4,299 तो शुरू।
3: उन्हें संपर्क करो शैलेन सिंह नो
4: 0272-929-776। सिंह फ्यूनरल सर्विसेज, अंतिम सफर विच पूरी
5: बड़ी रीत से तो साड़ी भी कार रौनका होन, साड़ी भी वेड़े किलकारियां होन।
6: ताही आपा चले हैं आयुर्वेदा हेल्थ क्लिनिक, जिथे आयुर्वेदिक तरीके नाल पूरी तरह प्रोफेशनल अप्रोच है ते तुहानू इमोशनल सपोर्ट भी दिंदे ने।
5: आज ही कॉल करो डॉक्टर प्रिया नू, जिन्हां नू है 33 सालां दा तजुर्बा। हुन दुनिया दे किसी भी कोने च बैठे ऑनलाइन कंसल्टेशन लो ते ट्रीटमेंट पाओ। ज्यादा जानकारी लई विजिट करो www.drpriaayurvedic.com। ऑनलाइन कंसल्टेशन लई व्हाट्सएप करो 0212530961 या ईमेल करो priya@ayurvedic.co.nz।
6: हजार तो वध लोगों की जिंदगी नु रोशन किया, तुसी भी उनका हिस्सा बनो। स्टे पॉजिटिव, डॉट गिव अप।

0: गुरु मार्ट किचन वेयर होवे या फिर पूजा आइटम्स जीवे के रुमाला साहेब कृपाना श्री साहेब कछेरा कड़े सर्ब लोदे पांडे गुरु साहिब दे हर साइज दे फोटो फ्रेम मंदिर मंजे कुंडे चकले वेल ने न्यूजीलैंड सर्टिफाइड चुल्ले मलमल दुपट्टे रिटेल दे होल सेल सब कुछ इको छत्थले गुरु मार्ट 1542158 कोलमा रोड पापा टोयटोय कॉल 09277228 और व्हाट्सएप 02231721314 और विजिट gurumart.co.nz नेशन वाइड शिपिंग अवेलेबल
1: प्यारे दोस्तों तुहानूं सारयां नूं सब तों पहलां सरबजीत चीमा वल्लों प्यार भरी सति श्री अकाल प्रवान होवे ते तुसीं सुन रहे हो अपने मन पसंद दा रेडियो रेडियो स्पाइस सुनदे रहो रब रखा सति श्री अकाल
2: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਵਤੇ ਰੰਧਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਟੋਪ 10 ਕਾਊਂਟਡਾਊਨ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟਰੈਕ ਨੰਬਰ 1 ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੰਬਰ 10 ਤੋਂ

पूर्ण होए चित की इच्छा, तब चरण मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा, हमरे दुष्ट सबै तुम कावो, आप हाथ दै मोहि बचावो, सुखी वसै मोरो परवारा, सेवक सिख सबै करतारा, मोर इच्छा निज कर दै करिया, सब बैरन को आज संगरिया, पूर्ण होए हमारी आशा, और भजन की रह प्यासा, तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याओ, जो बर चाहो सो तुम ते पाओ, सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्रो हमारे मारी है, आप हाथ दे मुझे उबरिया, मरण काल का त्रास नवरिया, पूजो सदा हमारे पच्छा, सिरिया तुझो करो रच्छा।

चतुर्दशकंता काल पाए ब्रह्मा बवतरा काल पाए शिवजु अवतरा काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जमन काल जोगी शिव कियो वेदराज ब्रह्मा ज्योतियो जमन काल सब लोक सुवारा नमस्कार है ताए हमारा जमन काल सब जगत बनायो देव दैत जचन उपजायो आद अंत एक है अवतारा सोई गुरु समझो हमारा नमस्कार किसी को हमारी सकल प्रजा जिन आप सुवारी शिवकन को शिवगुण सुख दियो सतन को पलमो बद कियो काट काट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पहचानत चीटी ते कुंचर अस्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतम दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पहचाने काट काट के पट पट की जाने जब उदकर करा कर तारा प्रजा दर्द तब दे अपारा जब आकर कर्त हो कब हूँ तुम मैं मिलत दे तर सब हूँ जेते बदन सृष्ट सब थारे आप अपनी बूझ उचारे तुम सब ही तेरे निरालम जानत बेद भेद अल आलम निरंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंभ ताका मूड उचारत पेदा जा को पेव न पावत बेदा ताको कर पाहन अनमानत महामूड किछ पेद न

शिव को कह सदा शिव, निरंकार का चिंतनै तिव। आप अपनी बुद्ध है जेती, बरनत पिन पिन तोय तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, कहब सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंग प्यो राव कई पूपा। अंडज जे राज से तज कीनी, उत्पुज खान बहु रज दीनी। कहो फू राजा हर बैठा, कहो सिमट पयो शंकर कैठा। सगरी सृष्टि दिखाए चंभव, आज जुगा स्वरूप सुजंभव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगरो। दूत जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रन काता। जे आज तो तब सरनी परे, तिन के दुष्ट दुख है मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिन के तुम संकट सब तारे। जो कल को एक बार तिहाय है, ताके काल निकट नहीं आए है। रक्षा होए ता सब काला, दुष्ट अरिष्ट तरे तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहन हर हो।

तब ते को आख तेरे निया न्यो राम रहीम पुराण कुरान अनेक है मत एक न मान्यो सिमरत शास्त्र बे सब है बहु भेद कह हम एक न जान्यो श्री अस्पान कृपा तुमरी कर मैना केहो सब तो बखान्यो दोइरा

संत साजन तै सरसे पूरे गुरते जाने। सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रिया पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद पूरे। मधामनी महला पंजवां। हाल विच तिन वस्तु पईओ सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकर का पयो जिसका सबसे आधारो। जे को खावे जे को पुंचे।

लो जी फटाफट तुहानूं एक गाना सुनाउंदे आ, फिर मिलते हैं। लेंदे पंजाब दी बड़ी खूबसूरत आवाज़ सरमद कदीर, आओ जी।

0: यार अल्कोहल लाइसेंस अप्लाई करना हेडेक बन गया।
1: स्ट्रेस ना ले, परविंदर डेविस लॉ है ना, न्यू लाइसेंस रिन्यूअल्स ते सारे अल्कोहल लाइसेंसिंग रिलेटेड लीगल इश्यूज दी प्रॉपर हैंडलिंग।
0: इवेंट और टेम्पररी अल्कोहल लाइसेंस भी।
1: हाँ, लाइसेंस अपील्स, पुलिस कार्रवाई, एम्प्लॉयमेंट इश्यूज ते होर सब लीगल काम एक ही छत नीचे। ते एक गल होर, उन्हां नाल गल अपनी लैंग्वेज विच कर सकदे हो, इंग्लिश, हिंदी ते पंजाबी। परविंदर डेविस लॉ, अल्कोहल लाइसेंसिंग हुन हो गई इजी। फॉर मोर इनफॉरमेशन कॉल 6421214091।
2: ओए राकेश, की होया?
3: ओए यार, मेनू सच्ची ओदी बहुत याद आउंदी है। इस विदेश दी धरती ते सच्ची मैं ओनू बहुत मिस कर रहा।
2: ओए उदास ना हो, दस मेनू केदी याद आ रही है तेनू?
3: इंडियन खाने दी।
2: कमलिया, बस इयो गल है। चल आप चलिए चावलास इंडियन रेस्टोरेंट, जिथे वेज ते नॉन वेज विच बहुत सारी बेस्ट फूड डिशेस अवेलेबल ने।
3: पर कार किथे खड़ी करांगे?
2: घबराना, उथे पार्किंग ले भी वड्डी स्पेस है।
4: चावलास इंडियन रेस्टोरेंट 5613615 ग्रेट साउथ रोड मनुकाओ। अपने फंक्शंस पे बुकिंग ले कॉल 0926231322।
5: चावलास लुधियाना वाले दी ब्रांच हुन न्यूजीलैंड दे विच भी। ए फूड बिना किसी फूड कलर तो तैयार करदे ने।
6: Yes, मैं जीत गया।
7: वाह बेटा, फोन ते ता बहुत फास्ट है, पर दस 18+7+13 यही ता मुश्किल है। स्क्रीन तो अख नहीं हटदी, पर पढ़ाई वेले ध्यान नहीं टिकदा।
8: साडा भी यही हाल सी, फिर असी SIP अबेकस ज्वाइन करवाया। बेटा दस 24+58+93+76 251।
9: न्यूजीलैंड सेंटर खोल रहा है फ्री ट्रायल क्लासेस 2-3 मई 2026। कॉल करो 09977996 7। नंबर एक बार फिर तो नोट करो 09977996 7। फोन तो दूर, SIP अबेकस जरूर।
10: मदर्स डे दे खास मौके ते ग्लिटर ज्वेलर्स ने लगा देती है सेल, ते तुहाडे लिए ले आए ने शानदार स्पेशल्स। 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते सिल्वर ज्वेलरी दे उते बहुत सारे स्पेशल्स। ग्लिटर ज्वेलर्स जो के 2x216 ग्रेट साउथ रोड मनरेवा दे विच स्थित ने, हर रोज सवेरे 10 बजे तो लेके 5:30 बजे तक तुहाडी सेवा दे विच हाजिर रहिंदे ने। नेक्स्ट टू SB बैंक, फोन 02244000 ते। ना फेसबुक ना ट्विटर, हुण याद रखो सिर्फ और सिर्फ ग्लिटर।
11: हजारा सपने पर इमिग्रेशन दा रास्ता मुश्किल,
12: मिलेनियल्स इमिग्रेशन NZ नाल सब कुछ आसान।
11: स्टूडेंट वीजा, वर्क वीजा, रेसिडेंस, सही राह ते सही सलाह। लाइसेंस इमिग्रेशन एडवाइजर अनीश राणा ते सौम्या मलिक,
12: तुहाडे भविष्य लई भरोसेजोग नाम। अनीश राणा एंड सौम्या मलिक, लाइसेंस इमिग्रेशन एडवाइजर्स। कॉल करो 02108531295 या 02252800084
11: और विजिट 1 पोलन स्ट्रीट ग्रे लेन ऑकलैंड।
12: मिलेनियल्स इमिग्रेशन NZ, तुहाडे सुपने साडी जिम्मेवारी।
13: कारोबार वधाना होवे या टैक्स रिटर्न फाइल कराना होवे, युगराज सिंह माहिल CA ते भरोसा करो। टैक्स होवे या बिजनेस, युगराज सिंह माहिल नाल सब कुछ है आसान।
14: ओ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड दे मेंबर ने।
13: इनकम टैक्स रिटर्न, GST रिटर्न, सालाना रिपोर्ट, तनखा एंड BAYE। नवा बिजनेस शुरू करना, कारोबार दी सलाह, लोन एंड बैंक रिपोर्ट, इमिग्रेशन ले फाइनेंस पेपर, IRD ऑडिट, टैक्स तो बिजनेस ग्रोथ तक।
14: युगराज सिंह माहिल चार्टर्ड अकाउंटेंट है थोड़े नाल। कॉल करो 02102346659।
15: सेहतमंद जीवन ले माहर डॉक्टरां दी सहायता लोड़ेंदी है। हमेशा थोड़े नाल हैमिल्टन लेक क्लिनिक तो पंजाबी अते हिंदी बोलन वाले डॉक्टरां दी टीम। 5 क्लिनिकां च साडियां सेवावां उपलब्ध ने। पेम्ब्रोक स्ट्रीट क्लिनिक, ग्रे स्ट्रीट क्लिनिक, रोडोटूना क्लिनिक, डिजडेल क्लिनिक। अपॉइंटमेंट ले कॉल करो डॉक्टर दिलावर जां डॉक्टर लखमिंदर होरां नूं। फोन नंबर 07839-0092, 07-8-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
16: Hey, yeah. Because you don't want to be.
17: I ain't going.

कुछ सुनहरे पलानों याद करना, कुछ सुनहरिया यादां नूं नाल लेके जाना। ओल्ड इज गोल्ड ए प्रोग्राम थोड़े वास्ते हर शनिवार नूं 12 बजे तो लेके 2 बजे तक, 1 घंटा पंजाबी ते 1 घंटा पुराने हिंदी गीतां दा सिलसिला मेरे यानी कि सुरेंद्र गर्जा।

गल दे विच हासे ठठे एवें जनता फन बना गई। ओए हुण तां सियाणे बन जो, अग खुद दे घर वल आ गई। जंग करोना जित के छड़नी, एवें पिछे पैर धरोना, ओए महल भी खाली कर दूगा जे आ गया झुग्गियां विच करोना, जे आ गया झुग्गियां विच करोना।

0: For exciting updates, subscribe to youtube.com/FalakShabbir.
1: सीमा पर दोनों मुल्कों में तनाव बढ़ चुका है और खबर आ रही है कि कल रात की मुठभेड़ में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो चुके हैं।

हमने मोहब्बत क्या की उनसे कि उनकी नजर में हम आम हो गए, गिरे भी हम ही और मरे भी हम ही। किस्मत तो देखो, हम ही बदनाम हो गए।

अर्ज किया है कि वफा नहीं जफा तो दो, अरे वफा नहीं जफा तो दो, नया साल है कोई तोहफा तो दो। दिल विल बच्चों के खेल हैं, ये दिल विल सब बच्चों के खेल हैं, सर दें

असंख मूरख अंध घोर, असंख चोर राम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गल वढ़ हत्या कमाहें, असंख पापी पाप कर जाहें, असंख कूड़े यार कूड़े फिराहें, असंख मलेच मल पक खाएं, असंख निंदक सिर करहें भार, नानक नीच कह विचार, वारिया ना जावा एक वार, जो तुद भावै सही भली कार।

अमूल व्यापारी है, अमूल भंडार, अमूल आव हैं, अमूल लै जाए, अमूल पाए, अमूल आसमाए, अमूल धर्म, अमूल दीवान, अमूल तुल, अमूल परवान, अमूल बख्शीश, अमूल निशान,

प्रभु को सिमरे तिन सद बलिहारी, प्रभु को सिमरे से मुख सुहावे, प्रभु को सिमरे तिन सुख बिहावे, प्रभु को सिमरे तिन आत्म जीता, प्रभु को सिमरे तिन निर्मल रीता, प्रभु को सिमरे तिन अनंत कनेरे, प्रभु को सिमरे बसे।

नानक पाईऐ साध कै संग जय मार के गने जाए न कुसा हर का नाम ऊहा संगतोसा जय पैडे महा अंध गुबारा हर का नाम संग उजियारा जहां पंथ तेरा को ना।

हर का नाम जन को मुक्त जुगत, हर के नाम जन को तृप्त भुगत, हर का नाम जन का रूप रंग, हर नाम जपत कब परे न भंग, हर का नाम जन की वड्याई, हर के नाम जन शोभा पाई, हर का नाम जन को भोग जोग, हर नाम जपत कछनाए वियोग, जन राता हर नाम की सेवा, नानक पूजै हर हर देवा, हर हर जन कै माल खजीना, हर धन जन को आप प्रभ दीना, हर हर जन कै ओठ स्तानी, हर प्रताप जन अवर न जानी, ओत पोत जन हर रस राते, सुन समाद नाम रस माते, आठ पहर जन हर हर जपै, हर का भगत प्रगट नहीं छपै, हर की

की कथा। नाम सुनत दर्द दुख लथा, नाम की महिमा संत रिद वसै, संत प्रताप दुर्त सब नसै, संत का संग वडभागी पाईऐ, संत की सेवा नाम त्याईऐ, नाम तुल कछ अवर न होए, नानक गुरमुख नाम पावे जन कोई, श्लोक बहु शास्त्र बहु सिमरती, पेखे सर्व टंडोल, पूजस नाही हर हरे, नानक नाम अमोल अष्टपदी, जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, खट शस्त्र सिमरत बखियान, योग अभ्यास कर्म त्र

साधना करै मन ते कबहूना बिख्या टरै जल धूबे बहु दे अनीत शुद्ध कहां होए काची भीत मन हर के नाम की महिमा ऊच नानक नाम उदरे पतित बहु मूच बहुत सियाणप जमका भौ व्यापै अनक जतन कर तिशना त्रापै भीख अनेख अगन नहीं बुझै कोट उपाव दरगे नहीं सिजै छूट सनाही उब प्याल मोह व्यापी माया जाल अबर करतूत सगली जमडाने गोविंद भजन बिन तिल नहीं माने हर का नाम जब दुख जाए नानक बोले सह

अष्टपदी दस वस्तु लै पाछे पावे एक वस्त कारण बेखोट गुआवे एक पीना दे दस पीहर ले तो मूड़ा को कहां करे जिस ठाकर से ना ही चारा ताको की जाए सद नमस्कारा चांके मन लागा प्रभ मीठा सर्व

अनंत उलास अपनी अमान कशबहर शाहो ले अज्ञानी मन रोस करे अपनी प्रतीत आप ही खोबे बहुर उसका विश्वास न होवे जिसकी बस तिस आज्ञा राखे प्रभु की आज्ञा माने माथे उसते चौगन करे निहाल नानक साहेब सदा दयाल अनक भांत माया के हेत सर पर होवत जान अनेत बिरखी छाया स्यू रंग लावे ओ बिनसे ओ मन पुछतावे जो दिसे सो चालन हार लपट रहो तै अंध अंधार बटाऊ स्यू जो लावे नहीं ताको हाथ न आवे के मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई कर कृपा नानक आप ले लाई मिथ्या तन धन कुटम सवाया मिथ्या होमी ममता माया मिथ्या राज जोवन धन माल मिथ्या काम क्रोध बिकराल मिथ्या रथ हस्ती अश्व वस्त्रा मिथ्या रंग संग माया पीख हस्ता मिथ्या ध्रो मुह अभिमान मिथ्या आप सुपर करत गुमान अस्त्र भगत साध की शरण नानक जप जप जीवै हर की चरण मिथ्या सर्वन पर निंदा सुने मिथ्या हस्त पर दर्ब को हिर है मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रया रूपाद मिथ्या रसना भोजन अनस्वाद मिथ्या चरण पर विकार को धावे मिथ्या मन पर लोभ लुभावे मिथ्या तन नहीं पर उपकारा मिथ्या बास लेत बिकारा।

देव अष्टपदी जह प्रसाद शत ही अमृत खाहे तिस ठाकर को रख मन माहे जह प्रसाद सुगंधत तन लावे तिस को सिमरत परम गत पावे जह प्रसाद बसे सुख मंदर तिसे त्याए सदा मन अंदर जह प्रसाद ग्रह संग सुख वसना आठ पैर सिमरो तिस रसना जह प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याय त्यावन जोग जह प्रसाद पाठ पटंबर हंडाव है तिसे त्याग कत अवर लुभाव है जह प्रसाद सुख से सुई जय मन आठ पैर तांका जस गावी जय जह प्रसाद तू सबको माने मुखता को जस रसन बखाने जह प्रसाद तिरु रहता धर्म मनसता त्याय केवल पार ब्रह्म प्रभ जी जपत दरगह मान पाव है नानक पत छेती घर जाव है जय प्रसाद अरोग कंचन देही लिव लावो तिस राम स्नेही जय प्रसाद तेरा ओला रहत मन सुख पावे हर हर जस कहत जय प्रसाद तेरे सगल छिद्र ढाके मन सरनी पर ठाकर प्रभु ताके जय प्रसाद तुझको ना पहुंचे मन सास सास सिमरो प्रभु ऊचे जय प्रसाद पाई दुर्लभ दे नानक ताकी भगत करे जय प्रसाद अपूखन पहरी जय मन तिस सिमरत क्यों आलस की जय जय प्रसाद असव अस्त असवारी मन तिस प्रभ को कबहू ना बिसारी जय प्रसाद बाग मिल्ख तना राख प्रोए प्रभ अपने मना जिन तेरी मन बनत बनाई उठत बैठत सद तिसे त्याई तिसे त्याई जो एक अलख है इहां उहां नानक तेरी रखै जय प्रसाद करे पुन भव दान मन आठ पहर कर तिसका ध्यान जय प्रसाद तू अचार व्यवहारी तिस प्रभु को सास सास चितारी जय प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभ सिमरो सदा अनूप जय प्रसाद तेरी निकी जात सो प्रभ सिमर सदा दिन रात जय प्रसाद तेरी पत रहे गुरु प्रसाद नानक जस कहे जय प्रसाद सुने करन नाद जय प्रसाद पेखे बिस्माद जय प्रसाद बोले अमृत रसना जय प्रसाद सुख सहजे बसना जय प्रसाद हस्त कर चले जय प्रसाद संपूर्ण फले जय प्रसाद परम गत पावे जय प्रसाद सुख सह समावे ऐसा प्रभ त्याग अवर कत लागो गुरु प्रसाद नानक मन जागो जय प्रसाद तू प्रगट संसार तिस प्रभ को मूल न मनो विसार जय प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूड तू ताको जाप जय प्रसाद तेरे कार्य पूरे तिसे जान मन सदा हजूरे जय प्रसाद तू पावे साच रे मन मेरे तू ता स्यो राच जय प्रसाद सबकी गत होए नानक जाप जपै जप सोए आप जपाए जपै सो नाओ आप गुआए सोहर गुन गाओ प्रभु कृपा ते हुई प्रगास प्रभु दया ते कमल विगास प्रभ सो प्रसन्न बसे मन सोए प्रभ दया ते मत उत्तम होए सर्ब निदान प्रभ तेरी मया आपो कछु न किन्हू लिया चित चित लावो तित लगे हर नाथ नानक इन कै कछु न हाथ स्लोक अगम अगाध पार ब्रह्म सोए जो जो कहे सुमुक्ता होए सुन मीता नानक बिनबंता साध जना की अचरज कथा अष्टपदी साध कै संग मुख उज्जल होत साध संग मल सगली खोत साध कै संग मिटे अभिमान साध कै संग प्रगटे सुज्ञान साध कै संग बुझे प्रभ नीरा साध संग सबहूत नबीरा साध के संग पाए नाम रतन साध के संग एक ऊपर जतन साध की महिमा बरनी कौन प्राणी नानक साध की शोभा प्रभ माहि समानी साध के संग अगोचर मिले साध के संग सदा प्रफुल्ले साध के संग आवे बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा साध संग होए सब की रेन साध के संग मनोहर बैन साध के संग नकत हुंता वे साध संग अस्थित मन पावे साध के संग माया ते भिन्न साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न साध संग दुश्मन सब मीत साधु के संग महापुनीत साध संग के स्यों नहीं बैर साध के संग न बिगा पैर साध के संग नाही को मंदा साध संग जाने परमानंदा साध के संग नाही हो ताप साध के संग तजे सब आपे जाने साध बढ़ाई नानक साध प्रभु बने आई साध कै संग न कबहू तावे साध के संग सदा सुख पावे साध संग बस्त गोचर लह साधु कै संग अजर सह साध के संग बस है थान ऊंचे साधु के संग महल पहुंचे साध के संग दृढ़े सब धर्म साध के संग केवल पार ब्रह्म साध के संग पाए नाम निदान नानक साधु कै कुर्बान साध के संग सब कुल उधारे साध संग साजन मीत कुटुंब निस्तारे
साधु के संग सो धन पावै, जिस धन ते सब को वरसावै। साध संग धर्म राय करे सेवा, साध के संग सोभा सुरदेवा। साधु के संग पाप पलायन, साध संग अमृत गुण गायन। साध के संग सर्व थान गम, नानक साध के संग सफल जन्म। साध के संग नहीं कछ काल, दर्शन भेटत होत निहाल। साध के संग कुलुखत हरै, साध के संग नरक पर हरै। साध के संग इहां उहां सुहेला, साध संग बिछरत हर मेला। जो इच्छे सोई फल पावै, साध के संग न बिरथा जावै। पार ब्रह्म साध रिद्ध वसै, नानक उदरै साध सुन रसै। साध कै संग सुनो हर नाओ, साध संग हर के गुण गाओ। साध के संग न मन ते बिसरै, साध संग सर पर निस्तरै। साध के संग लगे प्रभ मीठा, साधु के संग घटघट डिठा। साध संग पै आज्ञाकारी, साध संगत पै हमारी। साध के संग मिटे सब रोग, नानक साध भेटे संजोग। साध की महिमा भेद न जाने, जेता सुने तेता बखियाने। साध की उपमा तह गुण ते दूर, साध की उपमा रही भरपूर। साध की शोभा का ना ही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत। साध की शोभा ऊंच ते ऊंची, साध की शोभा मूच ते मूची। साध की शोभा साध बनाई, नानक साध प्रभु भेद न पाई। श्लोक मन साचा मुख साचा सोए, अवरना पिख है एक सबिन कोए। नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए, अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी सदा नरलेप। जैसे जल में कमल अलेप, ब्रह्म ज्ञानी सदा नरदोख। जैसे सूर सर्व को शोक, ब्रह्म ज्ञानी के दृष्ट समान। जैसे राज रंग को लागे तुल पवान, ब्रह्म ज्ञानी के धीरज एक। ज्यों वसुद्धा को खोदे को चंदन लेप, ब्रह्म ज्ञानी का एहो गुनाओ। नानक ज्यों पावक का सहज स्वभाव, ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला। जैसे मैं न लागै जला, ब्रह्म ज्ञानी कै मन हुए प्रगास। जैसे तर ऊपर आकाश, ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र सत्र समान। ब्रह्म ज्ञानी कै नहीं अवमान, ब्रह्म ज्ञानी ऊंच ते ऊंचा। मन अपने है सब ते नीचा, ब्रह्म ज्ञानी से जन पै। नानक जिन प्रभ आप करे, ब्रह्म ज्ञानी सगल किरीना। आत्मरस ब्रह्म ज्ञानी चीना, ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मैया। ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पया, ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी। ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत वर्षी, ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता। ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता, ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान। नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान, ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आस। ब्रह्म ज्ञानी

ने भेद ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश, ब्रह्म ज्ञानी का कथया ना जाए अदाखर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर, ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने, ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता, ब्रह्म ज्ञानी सद जीव नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ, ब्रह्म ज्ञानी का

एक है भगवान निमक निमक ठाकुर नमस्कार है नानक ओह अपर सगल निस्तार है अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस मन में प्रीत निरंजन दर्स पर त्रै रूप न पिखे नेत्र साध की टैल संत संग हेत कर न सुने काहू की निंदा सब ते जाने आपस को मंदा गुरु प्रसाद बिखिया पर हरै मन की बासना मन ते टरै इंद्री जित पंच दोख ते रहत नानक कोट मदे को ऐसा अपरस बैसनो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न बिसन की माया ते होए भिन्न कर्म करत होवे नह कर्म तिस बैसनो का निर्मल धर्म काहू फल की इच्छा नहीं बादशह केवल भगत कीर्तन संग्राचै मन तन अंतर सिमरन गोपाल सब ऊपर होवत कृपाल आप विरै अवरै नाम जपावै नानक ओ बैसनो परम गत पावै भगौती भगवंत भगत का रंग सगल त्यागे दुष्ट का संग मन ते बिनसै सगला भरम कर पूजे सगल पार ब्रह्म साध संग पापा मल खोवै तिस भगौती की मत उत्तम होवै भगवंत की टहल करै नित नीत मन तन अर्पै बिसन प्रीत हर कै चरण हृदय वसावै नानक ऐसा भगौती भगवान।

इस जग जीवै हर की कथा हृदय बसावै सो पंडित फिर जौ न आवै वेद पुराण सिमरत बूझै मूल सुख में जाने अस्थूल चौं वर्णा को दे उपदेश नानक उस पंडित को सदा आदेश बीज मंत्र सर्व को गया।

दूर नानक आप अलिप्त रहा प्रभूर। कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक सुर्ग निवासी, कई कोट जन्मे जीवे मरे, कई कोट बहु जूनी फिरे, कई कोट बैठत ही खाए, कई कोट काले थक पाए, कई कोट किए तनवंत, कई कोट माया में चिंत, जह जह भाणा तें तें राखे, नानक सब किछ।

कै हाथ होए तां सब किछले जोत सुभावै सोई करे अनजानत बिख्या मैं रचै जे जानत आपन आप बचै भरमे भूला दहद सतावै निमक माहे चार कुंठ फिरावै कर कृपा जिसे अपनी भगत दे नानक तेजन नाम मिले खिनमे नीच कीट कूराज पार ब्रह्म गरीब नवाज जां का दृष्ट कशु न आवै तिस तत्काल दहन दिस प्रगटावै जां को अपनी करै बख्शीश तां का लेखा न गने जगदीश जियो पिंड सब तिस की रास घट घट पूर्ण ब्रह्म प्रगास अपनी बणत आप बनाई नानक जीवै देख बढ़ाई इसका बल नाही इस हाथ करन करावन सर्व को नाथ आज्ञाकारी बपरा जियो जो तिस भावै सोई फुन थियो कबहू ऊंच नीच में बसै कबहू सोग हर खरंग हसै कबहू निंद चिंद व्योहार कबहू ऊब

गीत जब लग मोह मगन संग माए तब लग धर्म राय देह सजाए प्रभ कृपा ते बंधन टूटै गुर प्रसाद नानक हो छूटै सहस कटे ला कोट धावै तृप्त न आवे माया पाछे पावै अनक भोग बिख्या के करे नह तृप्तावे खप खप मरै बिना संतोख नहीं को राजै सुपन मनोरथ बिरथ सब काजै नाम रंग सर्व सुख होए बट भागी किसै प्राप्त होए करन करावन आपे आप सदा सदा नानक।

आवी ना जाए, नानक सद ही रिहा समाए। आप उपदेसै समझिए, आप आपे रचिया सब कै साथ। आप कीनो अपन विस्तार, सब कछ उसका उ करने हार। उसते भिन कहो किश होए, थान थनांतर इकै सोए। अपने चलत आप करने हार, कौतक करे रंग अपार। मन में आप मन अपने माहे, नानक कीमत कह न जाए। सत सत सत प्रभ स्वामी, गुर प्रसाद किनै वखियानी। सच सच सच सब कीना, कोट मदे किनै बिरले चीना। भला भला भला तेरा रूप, अत सुंदर अपार अनूप। निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी, घट घट सुनी सरबन बखियाणी। पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत, नाम जपै नानक मन प्रीत। श्लोक संत सरन जो जन परै, सो जन उदरन हार। संत की निंदा नानक, बहोर बहोर अवतार अस्पदी। संत कै दुखन आर जा कटै, संत के दुखन जमते नहीं छुटै। संत कै दुखन सुख सब जाए, संत के दुखन नरक में पाए। संत कै दुखन मत होए मुलीन, संत के दुखन सोबा ते हीन। संत के हते को रखे न कोए, संत कै दुखन थान भ्रष्ट होए। संत कृपाल कृपा जे करै, नानक संत संग निंदक भी तरै। संत के दुखन ते मुख पवै, संतन कै दुखन काग ज्यों लवै। संतन कै दुखन सर्प जून पाए, संत के दुखन त्रिगत जौन करमाए। संतन कै दुखन तृष्णा में जलै, संत कै दुखन सब को छलै। संत कै दुखन तेज सब जाए, संत के दुखन नीच न जाए। संत दोखी का थाव को नाहे, नानक संत पावे ता ओए पीगत पाए। संत का निंदक महा अतताई, संत का निंदक खिंटिक न पाई। संत का निंदक महा हत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा। संत का निंदक राज ते हीन, संत का निंदक दुखिया अरदीन। संत के निंदक को सर्व रोग, संत के निंदक को सदा बिजोग। संत की निंदा दोख में दोख, नानक संत पावे ता उसका भी होए मोख। संत का दुखी सदा अपवित, संत का दुखी किसे का नहीं मित। संत के दुखी को डान लागे, संत के दुखी को सब त्याग। संत का दुखी महंकारी, संत का दुखी सदा बेकारी। संत का दुखी जन्मे मरे, संत की दोखना सुख ते टरे। संत के दुखी को नाही ठाओ, नानक संत भावे ता लय मलाए। संत का दुखी अध बीच ते टूटे, संत का दुखी किते काज न पूछे। संत के दुखी को उद्यान परमैये, संत का दुखी उजड़ पाइये। संत का दुखी अंतर ते थोथा, ज्यों सांस बिना मृतक की लोथा। संत के दुखी की जड़ कछ नाही, आपन बीज आपे ही खाए। संत के दुखी को अवर ना राखन हार, नानक संत भावै तां लै उबार। संत का दुखी इउं बललाए, ज्यों जल बिहून मछली तड़फड़ाए। संत का दुखी भूखा नहीं राजै, ज्यों पावक ईंधन नहीं त्रापै। संत का दुखी छुटै अकेला, ज्यों बुआड़ तिल खेत महे दुहेला। संत का दुखी धर्म ते रहत, संत का दुखी सद मिथ्या कहत। किरत निंदक का तुर ही पिया, नानक जो तिस भावै सोई थिया। संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए, संत के दुखी को दरगाह मिले सजाए। संत का दुखी सदा सहकाइए, संत का दुखी ना मरे ना जिवाइए। संत के दुखी की पुजे नयासा, संत का दुखी उठ चलै नरासा। संत के दोख न त्रिष्टै कोए, जैसा भावे तैसा कोई होए। प्या कीर्तना मिटै कोई, नानक जाने साचा सोए। सब कट तिसके उ करने हार, सदा सदा तिसको नमस्कार। प्रभ की उस्तत करो दिन रात, तिसे त्यावो सास गिरास। सब किश वरतै तिसका किया, जैसा करे तैसा को थिया। अपना खेल आप करने हार, दूसर कौन कहे विचार। जिसनु कृपा करे तिस आपन नाम दे, बड़ भागी नानक जन से। श्लोक तजो सियानप सुरजनो, सिमरु हर हर राय। एक आस हर मन रखो, नानक दुख भरम पौ जाए। अस्तपदी मानुख की टेक, वृथि सब जान। देवन को इकै भगवान, जिसकै दिए रहे अगाए। बौर न तृष्णा लागे आए, मारे राखे इको आप। मानुख के कृष्णा ही हाथ, तिसका हुकुम बोझ सुख होए। तिसका नाम रख कंठ पुरोए, सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए। नानक बिगन न लागै कोए।
उस्तुत मन में कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार। निर्मल रसना अमृत पियो, सदा सुहेला कर ले जियो। नैनो पीक ठाकुर का रंग, साध संग बिन सह सब संग। चरण चलो मार्ग गोबिंद, मिटे पाप जपिए हर बिंद। कर हर कर्म सर्वन हर कथा, हर दरगे नानक उज्जल मत्था। बड़भागी ते जन जग माहे, सदा सदा हर के गुण गाहे। राम नाम जो करे विचार, से तनवंत गनी संसार। मन तन मुख बोले हर मुखी, सदा सदा जानो ते सुखी। एको एक एक पछानै, इत उत की ओ सोजी जानै। नाम संग जिसका मन मानिया, नानक तिने निरंजन जानिया। गुर प्रसाद अपन आप सुजै, तिसकी जानो तृष्णा बुझै। साध संग हर हर जस कहत, सर्व रोग त्यो हर जन रहत। अनदन कीर्तन केवल बख्यान, गृहस्थ में सोई निर्वाण। एक ऊपर जिस जन की आसा, तिसकी कटिया जम की फासा। पार ब्रह्म की जिस मन भूख, नानक सिसे न लागे दुख। जिसको हर प्रभ मन चित आवे, सो संत सुहेला नहीं डुलावे। जिस प्रभ अपना कृपा करे, सो सेवक कहो किस ते डरे। जैसा सा तैसा दृष्टाया, अपने कार्य में आप समाया। सोदत सोदत सोदत सीजया, गुर प्रसाद तत् सब बुझया। जब देखूं तब सब किछ मूल, नानक सो सूखम सोई स्थूल। न किछ जन्मे न किछ मरे, आपन चलत आप ही करे। आवन जावन दृष्ट अनदृष्ट, आज्ञाकारी धारी सब श्रिष्ट। आपे आप सगल में आप, अनक जुगत रच थाप ओ थाप। अबनासी नाही किछ खंड, धारण धार रहो ब्रह्मांड। अलख अपेव पुरख प्रताप, आप जपाए त नानक जाप। जिन प्रभ जाता सो सोभा वंत, सगल संसार उदरे तिन मंत। प्रभ के सेवक सगल उदारन, प्रभ के सेवक दुख विसारन। आपे मेल लय कृपाल, गुर का शब्द जब पै निहाल। उनकी सेवा सोई लागै, जिसनु कृपा करे बड़ भागै। नाम जपत पावे विश्राम, नानक तिन पुरख को उत्तम करमान। जो किछ करे सो प्रभ कै रंग, सदा सदा बसे हर संग। सह सुभाए होवे सो होए, करने हार पछाणे सोए। प्रभ का किया जन मीठ लखाना, जैसा सा तैसा दिष्टाना। जिस ते उपजे तिस माहे समाए, ओए सुख निदान उन्हू बनाए। आपस को आप दीनो मान, नानक प्रभ जन एको जान। स्लोक सर्व कला भरपूर प्रभ, बिरथा जाननहार। जाके सिमरन उदरिए, नानक तिस बलिहार अष्टपदी। टूटी गंड नहार गोपाल, सर्ब दिया आपी प्रतपाल। सगल की चिंता जिस मन माहे, तिस ते बिरथा कोई नाही। रे मन मेरे सदा हर जाप, अब नासी प्रभ आपे आप। आपन किया कछु न होए, जिसो

नाना चलत करे खिन माहे, पूर हो पूर्ण सब ठाए। नाना बिदकर बंत बनाई, अपनी कीमत आपे पाई। सब कट तिसके सब तिसके ठाओ, जप जप जीवे नान खरनाओ। नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मांड। नाम के तारे सिमृत वेद पुराण, नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान। नाम के तारे आगास पाताल, नाम के तारे सगल आकार। नाम के तारे पुरिया सब पवन, नाम के संग उदरे सुन सरवन। कर कृपा जिस अपने नाम लाए, नानक चौथे पद में सो जनगत पाए। रूप सत जांका सत अस्थान, पुरख सत केवल प्रधान। कुरतूत सत सत जांकी बाणी, सत पुरख स महे समाणी। सत कर्म जांकी रचना सत, मूल सत सत उत्पात। सत करनी निर्मल निर्मली, जिसे बुझाए तिसे सब भली। सत नाम प्रभु का सुखदाई, विश्वास सत नानक गुरु ते पाई। सत वचन साधु उपदेश, सत ते जन जांके हृदय प्रवेश। सत निरत बूझे जे कोए, नाम जपत तांकी गत होए। आप सत किया सब सत, आपे जाने अपनी मित गत। जिसकी सृष्ट सुकरने हार, और न बूझ करत भी।

मन में राखे हर हर एक, अंधकार दीपक प्रगासे, नानक परमो दुख तह ते नासे, तप्त माहे ठांड बरताई, अनंत पिया दुख नाठे पाई, जन्म मरण के मिटे अंदेसे, साधु के पूर्ण उपदेसे, पौ चुका निरपो होय बसे, सगल ब्याद मनते खै नसे, जिसका सातन कृपा धारी, साध संग जप नाम मुरारी, थित पाई चुके परम गवन, सुन नानक हर हर जस सरवन, निर्गुण आप सरगुण पियो ही, कला धार जिन सगली मोई, अपने चरित प्रभ आप बनाए, अपनी कीमत आपे पाए, हर बिन दूजा नाही कोई, सर्ब निरंतर इको सोई, ओत पोत रबिया रूप रंग, पय प्रगास साध कै संग, रच रचना अपनी कल धारी, अनकबार नानक बलिहारी, सलोक साथ न चाले बिन

सार भूत सत हर को नाओ सह सुभाए नानक गुन गाओ। गुन गावत त्रि उत्तर समैल बिनस जाए होमें बिखफैल। होय अचिंत बसै सुख नाल सास किरास हर नाम समाल। छाड़ सियानप सगली मना साध संग पावे सच तना। हर पूंजी सच करो बिहार इहां सुख दरगे जयकार। सर्ब नरंतर इको देख कहो नानक जाके मस्तक लेख। इको जप इको सलाहे एक सिमर इको मन आहे। एक सके गुण गाओ अनंत मन तन जाप एक भगवंत। एको एक एक हर आप पूर्ण पूर रहो प्रव्याप। अनक विस्तार एक ते पै एक अराध पराशित गए। मन तन अंतर एक प्रवराता गुर प्रसाद नानक एक जाता। श्लोक फिरत फिरत प्रभ आया परया तो शरणाए। नानक की प्रभ बेनती अपनी भक्ति लाए अष्टपदी। जाजक जन जाचे प्रवदान कर कृपा देवो हर नाम। साध जना की मांगो तूर पार ब्रह्म मेरी श्रद्धा पूर। सदा सदा प्रभु के गुण गावो सास सास प्रभु तुम्हें त्यावो। चरण कमल स्यों लागे प्रीत भगत करो प्रभु की नितनीत। एक ओट एको आधार नानक मांगे नाम प्रभसार। प्रभु की दृष्ट महा सुख होए हर रस।

अंग परे शरण आन सब त्याग अंतर प्रगास अनदिन लिवलाग बड़भागी जपया प्रभ सोए नानक नामरते सुख होए सेवक की मनसा पूरी पई सतगुर ते निर्मल मत लई जन को प्रभ होयो दयाल सेवक की नो सदा निहाल बंधन काट मुक्त जन पया जन्म मरण दुख भ्रम गया इच पुनी श्रद्धा सपूरी रव रहा सत्संग।

पेख दर्श सुख होए मन बिकसै साध चरण धोए भक्त जना के मन तन रंग बिरला को पावै संग एक बस दीजे करमैया गुर प्रसाद नाम जप लिया ताकि उपमा कही न जाए नानक रहा सर्व समाए प्रभ बख्संद दीन दयाल भगत वशल सदा कृपाल अनाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व कटां करत प्रतपाल आद पुरख कारण करतार भगत जना के प्राण आधार जो जो जपै सो होए पुनीत भगत पाए लावे मन हीत हम निर्गुनियार नीच अजान नानक तुमरे शरण पुरख भगवान सर्व बैकुंठ मुक्त मोख पाए एक निमक हर के गुण गाए अनक राज भोग वड्याई हर के नाम की कथा मन पाई बहु भोजन का प्रसंगीत रसना जपती हर हर नीत भली सुकरणी शोभा तनवंत हृदय बसै पूर्ण गुरमंत साध संग प्रभ देहो निवास सर्व सुख नानक प्रगास लोक सरगुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप आपन किया नानका आपे ही फिर जाप अष्टपदी जब आकार एक कछ न दृष्टेता पाप पुन तब कहते होता जब धारी आपन सुन समाद तब बैर विरोध की संग कमात जब इसका वर्ण चेहन न जापत तब हरख सो कहूं किसे व्यापत जब आपन आप पार ब्रह्म तब मोह कहां किस होवत परम आपन खेल आप प्रतीजा नानक करने हार न दूजा जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मुकुत कहो किस को गनी जब एक है हर अगम अपार तब नरक स्वरूप को कौन उतार जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाए तब शिव सकत कहो कित ठाए जब आपे आप अपनी जोत तरै तब कवन निडर कवन कत डरै आपन चलत आप करने हार नानक ठाकर अगम अपार अविनाशी सुख आपन आसन तह जन्म मरण कहो कहां बिनासन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जमकी त्रास कहो किस होए जब अवगत अगोचर प्रभ एका तब चित्रगुप्त किस पूछत लेखा जब नाथ निरंजन अगोचर अगा दे तब कौन छुटै कौन बंधन बाधे आपन आप ही अचर

तै कौन को मान कौन अभिमान, जह स्वरूप केवल जगदीश, तै छल छिद्र लगत कहकीस। जै ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावै, तै किसे भूख कवन तृप्तावै। करण करावन करनी हार, नानक करते का नाही सोमार। जब अपनी शोभा अपन संग मनाई, तब कवन माए बाप मित्र सुत भाई। जह सर्व कला आपे प्रवीन, तै वेद कतेब कहाँ को चीन। जब अपने आप आप उरतारै, तो सगन अपसगन कहाँ बिचारै। जय आपन ऊच आपन आप नीरा, तो कौन ठाकुर कौन कहिए चेरा। बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद, नानक अपनी गत जानो आप। जय अछल अशेर भेद समाया, ऊहा किसे व्याप्त माया। आपस को आपे आदेश, तह गुण का नाही प्रवेश। जय एक है एक एक भगवंता, तह कौन अचिंत किस लागे चिंता। जय आपन आप पतियारा, तै कौन कथे कौन सुन नेहारा। बहु बेअंत ऊचते उच्चा, नानक आपस को आपे पहुँचा। जय आप रच्यो प्रपंच आकार।

आपन खेल आप कर दिखै, खेल संकोचै तो नानक इकै। जय अवगत भगत है आप, जय पसरे पासार संत प्रताप। दोहूं पाखा आपे धनी, उनकी शोभा उन्हों बनी। आपे कौतुक करे अनंत चोज, आपे रस भोगन निर्जोग। जिस भावै तिस आपन नाए लावै, जिस भावै तिस खेल खिलावै। बेसुमार

करो उधार अमृत बचन हर के गुन गाओ प्राण तरन का एह सुआओ आठ पहर प्रपेखो नेरा मिटे अज्ञान बिनसे अंधेरा सुन उपदेश हृदय बसावो मन इच्छे नानक फल पावो हलत पलत दोइलहु सवार राम नाम अंतर उरतार पूरे गुरु की पूरी दिखिया जिस मन बसै तिस साच प्रिखिया मंत्र नाम जपो लिवलाए दुख दर्द मन ते भौ जाए सच वापार।

मत पूरी अमृत जांकी दृष्ट दर्शन पेखत उदरत श्रिष्ट चरण कमल जांकी अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप धन सेवा सेवक प्रवान अंतर जामी पुरख प्रधान जिस मन बसै सो।

संत संग अंतर प्रभ डीठा, नाम प्रभु का लागा मीठा। सगल समिग्री एक स्कट माही, अनकरंग नाना दिस्ताहे। नौनिध अमृत प्रभ का नाम, देही में इसका विश्राम। सुन समाद अनहत तहनाद, कह न जाई अचरज विस्माद। तिन दिखया जिस आप दिखाए, नानक तिह जन सो जी पाए। सो अंतर सो बहर अनंत, कट कट व्याप रहा भगवंत। धरन महे आकाश प्याल, सर्व लोक पूर्ण प्रतपाल। बंतन प्रभत है पार ब्रह्म, जैसी आ गया तैसा कर्म। पौन पाणी वै संतर माहे, चार कुंट दह दिसे समाहे। तिस्ते भिन्न ही कोठाओ, गुर प्रसाद नानक सुख पाओ। वेद पुराण सिमृत में देख, ससियर सूर नखत्र मेक। बाणी प्रभ की सब को बोले, आप अडोल न कबहू डोले। सर्व कला कर खेलै खेल, मोल न पाइए गुण है अमोल। सर्व ज्योत में जाकी ज्योत, धार्यो स्वामी ओत पोत। गुर प्रसाद भरम का नास, नानक तिन में एहो विसास। संत जना का पेखन सब ब्रह्म, संत जना के हृदय सब धर्म। संत जना सुने सो बचन, सर्व व्यापी राम संग्रचन। जिन जाता तिसकी ए रहत, सत बचन साधु सब कहत। जो जो होए सोई सुख माने, करन करावन हार प्रभ जाने। अंतर बसे बार पी ओही, नानक दर्शन देख सब मोही। आप सत किया सब सत, तिस प्रभ ते सगली उत्पत। तिस भावे ता करे विस्तार, तिस भावे ता एक अंकार। अनकला लखी न जाए, जिस भावे तिस लय मिलाए। कवन निकट कवन कहिया दूर, आपे आप आप भरपूर। अंतर्गत जिस आप जनाए, नानक तिस जन आप बुझाए। सर्व भूत आप बरतारा, सर्व नैन आप पिखनहारा। सगल समग्री जा का तना, आपन जस आप ही सुना। आवन जान एक खेल बनाया, आज्ञाकारी कीनी माया। सब के मद अल्प तो रहै, जो किश कहना सो आपे कहे। आज्ञा आवे आज्ञा जाए, नानक जा भावे ता लय समाए। इसते होए सोना ही बुरा, उरे कहो किने कुछ करा। आप भला करतूत अतनी की, आपे जाने अपने जी की। आप साच धारी सब साच, ओत पोत आपन संगराच। ताकि गतमित कही न जाए, दूसर होए तसो जी पाए। तिसका किया सब प्रवान, गुर प्रसाद नानक ई जान। जो जाने तिस सदा सुख होए, आ मिलाए लय प्रभ सोए। ओ तनवंत कुलवंत पदवंत, जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत। तन तन तन जन आया, जिस प्रसाद सब जगत राया। जन आवन का यह उसवाओ, जन के संचित आवे नाओ। आप मुक्त मुक्त करै संसार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार। श्लोक पूरा प्रभु अराध्या, पूरा जाका नाओ। नानक पूरा पाया, पूरे के गुण गाओ अस्पदी। पूरे गुरु का सुने उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पीख। सास सास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंद। आस अनंत त्यागो तरंग, संत जना की धूर मन मांग। आप छोड़ बेनती करो, साध संग अगन सागर तरो। हर धन की पर लेहु भंडार, नानक गुर पूरे नमस्कार। खेम कुशल सहज आनंद, साध संग भज परमानंद।

मैं भी कदे शिकवा ना कीता, उन्हें भी कदे घट ना दिता। मैं ओदा पल्ला छड़िया ना, कदे उन्हों दिल चों कड़िया ना। बिना मंगिया मैनू सब मिलिया, थां थां ते हथ मैं अड़िया ना। है मैनू ओदी रहमत ते, उन्हों भी मेरी मेहनत ते। सानू दोवां नू इक दूजे ते विश्वास बरोबर दा, विश्वास बरोबर दा।

और दूसरे पास ब्लड डोनेशन कैंप जो है, जी हाँ, सो छेवा ब्लड डोनेशन ड्राइव जो कि एच बी एथनिक कम्युनिटीज वालों करवाया जा रहा है 27 मई नो, सो दिन रहेगा बुधवार और 11 बजे तो लेकर शाम 6 बजे तक तुम इतने पहुँच सकते हो। टोटो इवेंट सेंटर 109 हेस्टिंग साउथ, बिल्कुल हेस्टिंग्स स्ट्रीट साउथ के विच पहुँच के तुम इतने अपना ब्लड डोनेट कर सकते हो। सो खूनदान कैंप लगाया जा रहा है और जिहड़े चाहवान ने वो इतने पहुँच सकते हैं। तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वास्ते तुम सुखदीप सिंह नूं कॉन्टैक्ट कर सकते हो 0220467799 इस नंबर जरूर पा सकते हो। फिलहाल गीत संगीत दी दुनिया के विच गुरदास मान साहब।

0: बस फेसबुक इंस्टा ते रील्स देखी जाओ, इंश्योरेंस ना करायो।
1: ओ डार्लिंग फिकर नॉट, आपा आज ही जाना इंस्टा श्योर। इंस्टा श्योर फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, ट्रस्टेड फाइनेंशियल एडवाइजर डीलिंग इन ऑल काइंड ऑफ पर्सनल इंश्योरेंस सर्विसेज,
0: लाइफ, मेडिकल, ट्रॉमा, आईपी एटसेट्रा फ्रॉम इयर्स। इफ यू आर टायर्ड ऑफ ओवरपेइंग योर एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस और लुकिंग फॉर बेस्ट ऑप्शन, गेट इन टच टुडे। कॉल 6422 6987837। इंस्टा श्योर फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लिमिटेड।

0: रंजीत पावा लाइव कॉन्सर्ट और रंजीत पावा के इस शो को देखने वास्ते 9 तरीक न पहुँचना है ड्यू ड्रॉप इवेंट सेंटर के और इन्हों के इस शो टिकट्स शायद ही हुण मिलन थानू क्योंकि ऑलमोस्ट सोल्ड आउट हो चुका है पूरी तरह ये शो और रंजीत बाबा दे बहुत खूबसूरत गाने जिन्हें टिकट्स ले ली हैं अपनिया जिन्होंने पता कि असी जाना ही है तो उन्होंने मौका मिलेगा स्टेज के उत्ते परफॉर्म करते हुए रंजीत बाबा जिन्हों की आवाज़ का तो थोड़ा पता ही है कि बड़ी ताकड़ आवाज है और जो गाँव है तो पूरी स्टेज हिलती है।
1: तुसी अपने आर्थिक भविख नू सुरक्षित करने लई तैयार हो? कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड तुहाडे सुपने पूरे करने लई हाजिर है।
2: तुहाडा सुपना घर खरीदना होवे या कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी चाहे तुहाडे कारोबार लई होवे तां साडी टीम तुहाडे लई हाजिर है। 25 साला तो वध दे तजर्बे नाल साडी माहर टीम हर कदम ते तुहाडी मदद करन लई समर्पित है।
1: विजिट करो capitalfinance.nz ते
2: या फिर आज ही सानू कॉल करो 0800-626-685 0800-626-685।
1: कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड जिथे तुहाडा
3: जिंदगी दा सच है एक दिन हर किसी नू इस दुनिया तो रुखसत होना हुंदा है
4: पर उस वेले सब तो जरूरी हुंदा है इज्जत मर्यादा ते पूरी सेवा दे नाल अंतिम विदाई।
3: ऑकलैंड विच सिंग्स फ्यूनरल सर्विसेज लेके आए ने पंजाबी फ्यूनरल पैकेजेस जिथे ट्रांसफर तो लेके एम्बामिंग लाइव स्ट्रीमिंग क्रीमेशन ते डेथ सर्टिफिकेट तक सारी जिम्मेदारी ओ संभालदे ने। टोटल पैकेज सिर्फ $4,299 तो शुरू।
5: उन्हें संपर्क करो शैलेन सिंह नो
6: 0272-929-776 सिंग्स फ्यूनरल सर्विसेज अंतिम सफर विच पूरी इज्जत ते सहारा। अप्लाई करने
7: तो पहला रात नो नींद नहीं आंदी सी फिर स्विफ्ट वीजा एंड माइग्रेशन सर्विसेज लिमिटेड वालिया ने फाइल हैंडल कीती हर स्टेप समझाया। आज न्यूजीलैंड च जॉब है फैमिली भी मेरे नाल है।
8: स्टूडेंट वर्क फैमिली AEWV ते रेजिडेंस वीजास स्विफ्ट वीजा एंड माइग्रेशन सर्विसेज ट्रंगा ऑफिस 150 द स्ट्रैंड CBD हेस्टिंग्स ऑफिस 309A फ्रेमली एवेन्यू कॉल सुखजिंदर सिंह 0226970651। सब दे सपने सच करते
9: सेहतमंद जीवन लई माहर डॉक्टरां दी सहायता लोड़ेंदी है। हमेशा तुहाडे नाल हैमिल्टन लेक क्लिनिक तो पंजाबी अते हिंदी बोलन वाले डॉक्टरां दी टीम 5 वक्-वक् क्लिनिकां च साडियां सेवावां उपलब्ध ने। पेम्ब्रोक स्ट्रीट क्लिनिक ग्रे स्ट्रीट क्लिनिक रोडोटूना क्लिनिक डिसडेल क्लिनिक। अपॉइंटमेंट लई कॉल करो डॉक्टर दिलावर जां डॉक्टर लखमिंदर होरां नूं। फोन नंबर 07839-0092 07839-0092।
0: बाकी पर्थ ते पंजाब दीआं खबरां जलंधर दे विच जो विस्फोट होया उस सिलसिले दे विच पुलिस दी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है और इस मामले दे विच एक नौजवान नूं भी अरैसट किया गया। इस तों बाद मामला काफ़ी पकिया नज़र आ रहा है और दूसरे पास अमृतसर दे विच हाई अलर्ट कर दिता है। शक्की वाहन मिलन की एक कारण दहशत जी आस पास दहशत का माहौल है लोग काफ़ी डरे हुए हैं। सो ये हूँ जो ब्लास्ट हो रहे हैं जगह जगह तो कई शहरों के ब्लास्ट है और इस तहत कई उतों पंजाब के हूँ मुंडिया चक्या जा रहा है ये कह के कि उत्थे अतवादी फिर तो अतवादियों वर्गा फिर तो दोबारा तो माहौल जड़ा है क्रिएट किया जा रहा है। सो कि ये एक गिनी मिथी साजिश है हूँ इलैक्शन आ रही इलैक्शन तो पहल ये पंजाब का माहौल खराब करना जगह जगह तो ब्लास्ट हो रहे हैं और इसके अलावा जोड़े नौजवान आ पंजाब के उन्होंने चुकया जा रहा है। इस मामले के सोच रहे हो कि सरकार जड़िया गिने मथी साजिश के तहत उत्थे ये सब कुछ करवा रही ने या फिर वाकई ही तुम सोच रहे हो कि 84 वर्गा माहौल जड़ा उ बनता नज़र आ रहा है।

0: हार आ रहे ने मिठाई की थोली होनी है।
1: ले दस इको जगह जिते मिलती है देसी घ्यो दी शुद्ध मिठाई। मंडे टू फ्राइडे हर रोज नवे स्पेशल्स। कड़ी चावल, मसाला डोसा, राजमा चावल, पिज्जा, पनीर डोसा। शिवानीज रेस्टोरेंट, नाम ही काफी है।
0: shivani.co.nz पे जाके ऑर्डर ऑनलाइन करो। न्यूजीलैंड कितने भी शिवानीज रेस्टोरेंट 905 डोमिनियन रोड, माउंट रॉस्किन, 23 एरिक बेकर प्लेस, बाबा टोई टोई। बोले रिश्ते आज मिठास, शिवानीज रेस्टोरेंट है खास। शिवानीज, वेयर टेस्ट मैटर।
2: की तुसी इमिग्रेशन दे किसे मसले दा हल चाहुंदे हो?
3: की तुहाडा वीजा बार बार रिफ्यूज हो रहा है?
2: तां फिर अज ही मिलो जेनिथ इमिग्रेशन सॉल्यूशंस नू।
4: सुखप्रीत कौर, लाइसेंस्ड इमिग्रेशन एडवाइजर, जेनिथ इमिग्रेशन सॉल्यूशंस। न्यूजीलैंड रेजिडेंस, स्टडी वीजा, वर्क वीजा या डेपोर्टेशन, सेक्शन 61 मिनिस्ट्रियल या ट्रिब्यूनल अपील। कॉल 211-825-718,
2: 211-825-718,
5: या फिर विजिट करो लेवल 1, 706 ग्रेट साउथ रोड, पेनरोज, ऑकलैंड।
2: विजिटर वास्ते कार पार्क अवेलेबल है।
6: ध्यान नाल सुनो साउथ ऑकलैंड वाले, साउथ ऑकलैंड मोटर्स लेके आया है बिगेस्ट सेल एवर। हुन गड्डियां दी कीमतां ते वड्डा वार, बिग डील्स, बिग

0: इवेंट और टेम्पररी अल्कोहल लाइसेंस भी।
1: हाँ, लाइसेंस अपील्स, पुलिस कार्रवाई, एम्प्लॉयमेंट इश्यूज ते होर सब लीगल काम एक ही छत नीचे। ते एक गल होर, उन्हां नाल गल अपनी लैंग्वेज विच कर सकते हो, इंग्लिश, हिंदी ते पंजाबी। परविंदर डेविस लॉ, अल्कोहल लाइसेंसिंग हुन हो गई इजी। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 6421214019।

सो ये मई महीना है और सिद्धू मूसेवाले दे जिन्ने भी फैनस उन्हों चाहन वाले पेरेंट्स तो होंगे ही काफ़ी भावुक हो जाते हैं क्योंकि 29 मई नूं ओह काला दिन आया जदों जिस वक्त उस नूं गैंगस्टर्स वालों या गौरमेंट वालों सब मतलब कहने कि 90% म्यूजिक इंडस्ट्री भी खुश हुई सी 90% 10% गुलाब सिद्धू वर्गे जिहड़े कि अज भी गल गल ते रोन लग पैंदे आ उन्हूं याद कर लग पैंदे भावुक हो जांदे आ सो 90% इंडस्ट्री भी खुश हुई सी कि साडी तां दाल फुलका हुण चलना शुरू हो जाना पर इह जिहड़े आ कहिंदे ने कि खुशफहमी उहनां दी ज़्यादा देर नहीं चली कि हुण सिद्धू तां रिहा ही नहीं है तां साडा दाल फुलका फिर उदों वांगू पहलां वांगू शुरू हो जाना लेकिन सिद्धू दे गीत किदां दे हुंदे सी सिद्धू दे गीत इदां दे हुंदे सी कि जिन्हां नूं असीं भुल चुके हाँ जिन्हां शख्सियतां नूं सो जिन्हां ने कुर्बानियां कीतियां पंजाब वास्ते और जिन्हां दे विच्चों आपां गल करदे जसवंत सिंह खालड़ा इन्हां दा जिक्र आया इन्हां दे गीतां दे विच डिंपी चंद पान दा जिक्र आया तो डिंपी चंद पान दा जिहड़ा उन्हां दी कुर्बानी है सो जो उन्हां ने कीता है अपने सिख कौम वास्ते कोई भी नहीं कर सकता अज भी उन्हां दी पिंड जिहड़ी है डिंपी चंद पान दी जो चंद पान पिंड है उन्हां दी फिरनी उत्ते अज उन्हां दा घर जिहड़ा बिल्कुल चुप चाप खड़ा है कहिंदे कि उत्थे गड्डियां दी लाइन लगी रहिंदी सी यूपी MP महाराष्ट्र तक दे जिहड़े नंबर वालियां गड्डियां उन्हां दे घर दे दरवाजे दे अगे खड़ियां रहिंदियां सी एक पीढ़ी लिखिया एक जो पढ़िया लिखिया खानदानी घर दा पुत जिहड़ा है जदों कहिंदे कि काले रस्ते वल मुड़िया तां फिर उस टाइम दे उत्ते अंत उदां दा हो गया जो अजिहे रास्ते दे उत्ते हुंदे आ मां प्यो ते की बीतदी होवेगी उस टाइम दे उत्ते जदों अपने पुत दीआं लाशां इकट्ठियां करदे रहिंदे सी पेरेंट्स लभदे रहिंदे सी कि साडा पुत लभा नहीं है फिर एक दिन लाश मिल जांदी और कईआं दी तां अज तक भी लाशां नहीं मिलियां अज दे नौजवान जो गाणियां दी चमक तमक नूं देख के जिहड़ा इस रस्ते ते तुरन दी सोचदे आ सो मैनूं लगदा है कि शायद किते ना किते असीं भी मतलब यही सोच रही है कि वो लोगों की सोच किदां दी होएगी जिन्होंने इदां दे बच्चों नूं जन्म दिता या फिर इदां दे हालात पैदा हो गए कि असीं अपने कौम लई अपने पुरखियां लई लड़ना है जिन्हों सेंट्रल गौरमेंट अतवादी कहती है।